0: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
1: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
0: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पक दिया।
1: ओहो, तो हानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले होंगे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी कर देने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाय भी इना कोलो मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-43-10-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉल 403-461-6161।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन, सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। इना ही नहीं, इना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
4: रेडियो सुरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सति श्री अकाल जी। अज दिन वीरवार मई महीने की 7 तरीक सन 2026, हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्रामां दे विच 8 बजे एक विशेष गलबात राजनीतिक समीख्याकार मनदीप सिंह मन्ना होरां दे नाल एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू 8 बजे पेश की जाएगी। इस तो बाद 9 बजे पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी नाल गलबात पेश करांगे। इह साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम विच खबरां ते चर्चा करांगे ते नाल असीं जो कैलगरी विच नगर कीर्तन सजाए जा रहे ने 9 मई नूं, उस ते एक विशेष गलबात गुरद्वारा साहिब दशमेश कल्चर सेंटर दे प्रबंधकां नाल, जिस विच नगर कीर्तन संबंधी अहम जानकारी जिहड़ी है जी उह दित्ती जाएगी। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ 18-19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ